गजानन वाटवे के स्वर में अभी आपने बाभ बोरकर की ये रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुंदा ताडगे और सहकारियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

0: संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी कुंदा ताडगे और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक देशभक्ति पर गीत समूह स्वर में। ये रचना है एन के बहरे की।
1: माता।

अंजलि केळकर ने गाई संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं एक पारंपरिक हिंदी भक्ति रचना आरती ठाकुर के स्वर में।

என் அபோகிராக ஆதிதாள கம்போஸ்ட் பை தியாகராஜ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए अभी प्रस्तुत है राग यामिनी बिलावल पर वायलिन वादन. कलाकार हैं पल्लव बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शिवनाथ भट्टाचार्य. तो लीजिए प्रस्तुत है राग यामिनी बिलावल पर वायलिन वादन. कलाकार हैं पल्लव बंदोपाध्याय.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन फर्स्ट टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग यामिनी बिलावल. आवर आर्टिस्ट इज पल्लव बंदोपाध्याय. Accompanying our artist on the tabla is

0: अभी आप राग यामिनी बिलावल पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पल्लव बंदोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे शिवनाथ भट्टाचार्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी प्रस्तुत है राग तोड़ी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं पंकज मिश्रा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ईमान सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग तोड़ी पर सारंगी वादन। कलाकार हैं पंकज मिश्रा।
1: You were listening to a violin recital in the rag Yamini Bilawal. Our artist was Pallob Bandopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Shibnath Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sarangi recital. Listen to the sarangi in the rag Todi. Our artist is Pankaj Mishra. Accompanying him on the tabla is Imon Sarkar. Listen now to the sarangi in the rag Todi. Our artist, Pankaj Mishra.

0: अभी आप राग तोड़ी पर सारंगी वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंकज मिश्रा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे ईमान सरकार। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सारंगी रिसाइटल इन द राग टोरी। आवर आर्टिस्ट वॉज पंकज मिश्रा। अकंपनिंग हिम ऑन द तबला वॉज ईमान सरकार। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन, राग है यमन कल्याण। इसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और झाला, जिसके बाद आप सुनेंगे एक गत जो धमार ताल में निबद्ध है।
2: इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। बिगिंस हिज रिसाइटल विथ राग यमन कल्याण, आलाप, जोड़ एंड झाला, फॉलोड बाय गत सेट टू धमार ताल।

0: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन, राग था यमन कल्याण। आपके साथ बगावत पर संगत की प्रकाश शेजवाल ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार पर बजाया राग अलैया बिलावल। इसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़, जिसके बाद आप सुनेंगे गत, जो कि चौताल में निबद्ध है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
2: दैट वाज राग यमन कल्याण। पंडित कार्तिक कुमार वाज अकंपनीड ऑन पखावज बाय प्रकाश शेजवाल। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम वी प्रेजेंट राग अलहैया बिलावल ऑन सुरबहार बाय पंडित कार्तिक कुमार, in which you listen Aalap Jod, followed by Gat set to Chautal.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग अलहिया बिलावल, और अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरभार पर बजाया राग चंद्रकोंस। इसमें आप पहले सुनेंगे आलाप और उसके बाद एक गद जो कि चौताल में निपत है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
2: दैट वाज राग अलहिया बिलावल, पंडित कार्तिक कुमार नाउ प्रेजेंट राग चंद्रकोंस, इन विच यू लिसन आलाप फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन, पखावज पर आपके साथ संगत की प्रकाश शेजवाल ने। यह आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
2: यू आर लिसनिंग सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार।

0: This is Agam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास सुनाई थी। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खाने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने।
1: यू जस्ट हर्ड राग विभास कंटिन्यूइंग विद हिज संतूर रिसाइटल। अभय रुस्तम सोपोरी नाउ प्रेजेंट्स राग भूपेश्वरी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन. उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे हैं अतुल फड़के. प्रस्तुत है ताल तीन ताल. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर. ही इज अकंपनीड ऑन हारमोनियम फॉर लहरा बाय अतुल फड़के. पंडित राजेंद्र अंतरकर प्रेजेंट्स ताल तीन ताल.

ये था ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल पंचम सवारी। दैट वॉज ताल तीन ताल। पंडित राजेंद्र अंतरकर नाउ प्रेजेंट ताल पंचम सवारी।

ये था ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर अब प्रस्तुत करते हैं ताल द्रुत तीन ताल। दैट वॉज ताल पंचम सवारी। पंडित राजेंद्र अंतरकर कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल विथ ताल द्रुत तीन ताल।

धगत तगड़े धिन ताक धान ताक धिक धिक धाक धिक धिक धिक धाक तगड़े तगड़े धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक धिन गने ना धिन धिक धिक धाक धाक ध

ये था ताल द्रुत तीन ताल। आप सुन रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर का तबला वादन। उन्हें हारमोनियम पर लहरा संगति कर रहे थे अतुल फड़के। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज ताल द्रुत तीन ताल। यू वेर लिसनिंग टू तबला रिसाइटल बाय पंडित राजेंद्र अंतरकर। He was accompanied on harmonium for Lehra by Atul Phadke. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग यमन पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस. आपके साथ तबले पर हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर हैं सोमनाथ बर्धान. तो लीजिए प्रस्तुत है राग यमन पर सितार वादन. कलाकार हैं स्वरूप कुमार बोस.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल फॉलोड बाय अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ सितार रिसाइटल इन द राग यमन. आवर आर्टिस्ट इज स्वरूप कुमार बोस. Accompanying our artist on the tabla is Pinaki Chakraborty and on the harmonium is Somnath Bardhan. Listen now to the sitar in the rag Yaman. Our artist, Swarup Kumar Bose.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग यमन पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे स्वरूप कुमार बोस। आपके साथ तबले पर थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर थे सोमनाथ बर्धान। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, तदुपरांत जिला दादरा। कलाकार हैं पत्रलेखा दत्ता राय। आपके साथ तबले पर हैं तुषार दत्तो और हारमोनियम पर है देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, तदुपरांत जिला दादरा। कलाकार हैं पत्रलेखा दत्ता राय।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Yaman. Our artist was Swarup Kumar Bose. Accompanying our artist on the tabla was Pinaki Chakraborty and on the harmonium was Somnath Bardhan. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a vocal recital. Listen to Mishra Pilu Thumri followed by Zila Dadra. Our artist is Potrolekha Dottoroy. Accompanying our artist on the tabla is Tushar Datta and on the harmonium is Debashish Odhikari. Listen now to Mishra Pilu Thumri followed by Zila Dadra. Our artist Potrolekha Dottoroy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम मिश्र पीलू ठुमरी, उसके उपरांत जिला दादरा सुन रहे थे। कलाकार थे पत्रलेखा दत्त राय, आपके साथ तबले पर थे तुषार दत्त और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू मिश्र पीलू ठुमरी फॉलोड बाय जिला दादरा। आवर आर्टिस्ट वॉज पत्रलेखा दत्त रॉय। Accompanying our artist on the tabla was Tushar Datta and on the harmonium was Debashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata, Boragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है सुषमा वाजपेयी का गाया शास्त्रीय गायन. सबसे पहले आप प्रस्तुत करेंगी राग भटियार में ख्याल.

अचंभित के बोल है उचक गई नींद मोरी बलमा, जो कि एक ताल में निबद्ध है, और द्रुत के बोल है माता महागी, जो कि एक ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र और तबले पर संगत कर रहे हैं निशांत कुमार सिंह। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टुडे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट क्लासिकल सिंगिंग बाय सुषमा बाजपेयी। शी इज प्रेजेंटिंग राग भटियार।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गाया राग भटियार। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का गाया राग अहीर भैरव में ख्याल। विलंबित के बोल है अलसाने ए लालन रे संग जागे, जो कि एक ताल में निबद्ध है। द्रुत के बोल है आई बसंत की ऋतु आली, जो कि 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ सारंगी पर संगति दे रहे हैं विनोद कुमार मिश्र और तबले पर संगति कर रहे हैं निशांत कुमार सिंह। दिस इज रागम 24 से DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू जस्ट हर्ड राग भटियार बाई सुषमा वाजपेयी। नाउ शी विल प्रेजेंट राग अहीर भैरव। विलंबित कॉम्पोजिशन इज अलसाई ये लालन रे संग जागे इज सेट टू 1 ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज आई बसंत की ऋतु आली इज सेट टू 3 ताल। अकॉम्पनिंग हर ऑन सारणी विनोद कुमार मिश्र एंड ऑन तबला निशांत कुमार।

अभी आप सुन रहे थे राग अहीर भैरव। यू जस्ट हर्ड सुषमा वाजपेयी इन राग अहीर भैरव। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का गाया राग मधुकौस। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग राग मधुकौस बाई सुषमा वाजपेयी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

Abani Sani, Abani Sani, Abani Sani.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां. राग है नट भैरव, जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुतगत, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग नट भैरव. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित गोपाल मिश्रा का सारंगी पर बजाया राग मारू बिहाग.
2: This is Ragam Channel of All India Radio. We now present a sarangi recital in Rag Maru Bihag by Pandit Gopal Mishra.

0: अभी आप पंडित गोपाल मिश्रा का सारंगी पर बजाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे, और अब लीजिए सुनिए राग मधुकौंस।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सारंगी रिसाइटल इन राग मारू बिहाग बाय पंडित गोपाल मिश्रा। लिसन नाउ टू राग मधुकौंस।

0: अभी आप पंडित गोपाल मिश्रा का सारंगी पर बजाया राग मधुकौन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सारंगी रिसाइटल इन राग मधुकौंस बाय पंडित गोपाल मिश्रा। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं RR पांचाल के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे आर पांचाल के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अब सुनते हैं समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना, जिसे गाया है रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार ने। संगीतकार है आनंद मोड़क।

रंजना पेठे और कीर्ति शिलेदार के स्वर में आप सुन रहे थे समर्थ रामदास स्वामी की भक्ति रचना। संगीत था आनंद मोड़क का। आइए आप सुनते हैं पंडित राव नगरकर के स्वर में संत तुलसीदास की भक्ति रचना।

0: संत तुलसीदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे पंडित राम नगरकर के स्वर में। आइए आप सुनते हैं संत मीराबाई की रचना सुधा मल्होत्रा के स्वर में।
1: तेरा कोई नहीं।

अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के स्वर में संत मीराबाई की रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी बबन राव नावड़ीकर के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत एकनाथ महाराज की, स्वर है मालती पांडे का।

शरद जांबेकर ने गाई, संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। आइए आप सुनते हैं रेखा रायरी कर किस्वर में संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना।